0: ऐसे गया था वैसे तो गेदर रखी हुआ टे आवसे तो गेदर याने के तमाई अमारुम वैडी
1: सलन ललन दलुव विलस नितंब न लोला नितंब न लोला
2: ये डाले में डाले ना तेरी नंबर ये ना इवी